गिद्धड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह

सिर तो कटवा दिता पर उसका हाथ फड़िया जेड़ा वो मुड़ के किसी भी हिंदू के मत्थे तो तिलक ना पहुंच सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं तर्दमंत्रंत पपीलते साद्रं लघंत पिंगं साद्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंध कह साध संगेण शिवरंत गोविंद साध संगेण शिवरंत।

नमो श्री प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, उस शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बढ़ैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

ते द्वय सुभतः सोही सुभतः सोही नमो लोहे की पोट का झलहे नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दाती।

सादो जिंदगी रख दीजिए पर जतन पिंजन है सदौती प्रजा दंडनी बिंजनी है सदौती सदा जय सदा जय सदा

खंडो खड़ग, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुक तवर अर्पी, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुमक तवर अर्पी, सैप सरोही सैपरी, यही हमारे सैप सरोही सैपरी, यही हमारे तीर तुही सैथी तुही तुही तवर तलवार, तीर तुही सैथी तुही तुही तवर तलवार,

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे है। कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरंग

नगारे वजदे जोधे गजदे ते सत्संग जी जंग हो रहा साहब कहिंदे नगर तन ठाकर।

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त,
0: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तलकाल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: 100 साल से भी फते चार फूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देश खालसे को तुर्क

0: देख खालसे को पुर्त जाएंगे देख खालसे को पुर्त जाएंगे
1: एक करे सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे झूलन नेगे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौब धुके सवा लाख जब धुके पलीता सवा लाख जब धुके पलीता तबे खालसा उदे

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नेओ छिलछु है न कोई रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। जूं चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछणा छड़िया बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल के जतन के नीको हो पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखिए। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए, फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए, व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए, विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए, मन हट न घटे चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे, अपन हथी आपनी जड़ आप उपटे।

अरे वो परमात्मा अपनी सेवक की प्रतिपालना किवें कर दे। जल अगल में जन आप उधारे कर अपने दे रख है हाथ, अपना हाथ दे के रख लेंदे, सिख नु कढ लेंदे। किवें

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे मुखार बिंद तो उच्चारण कीता है। जिस शब्द अंदर जीव प्राणी मात्र नु सतगुरु जी उपदेश देंदे ने और ए गल समझा रहे ने, हे प्राणा वाले प्राणी मनुख, एक नाम नु त्या, एक नाम नु याद कर, क्योंकि ए नाम ही तेरे नाल जाना है। सो साध संगत, धन गुरु नानक पातशाह दी इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू कलजुगी जीवां नू प्रेरणा देनी बड़ा सुंदर ख्याल करके आओ आपा इस शब्द नू मन विच वसाईए, हिरदे विच इस तरह धारण करिए जिवें सतगुरु समझा रहे ने।

उस पार ब्रह्म तो बिना किसे होर दूजे नूं नहीं जानना, केवल एक नूं मनना है। ते साध संगत, इतिहास विचों एक झलक बड़ी सुंदर चेते आई है तुहाडी चोली पावां। गुरु नानक पातशाह जिस वेले पीर दस्तगीर सवाल करदा है गढ़ बगदाद दी धरती अंदर, कहना गुरु नानक पातशाह तुसी एक दा पैगाम लैके आए हो, बार बार एक दा जिक्र कर दे हो, दसो दे सही एक है कौन? साहब कहंदे ने एक है अकाल पुरख। कहन लगे महाराज एक अकाल पुरख जिदे सिमरन दी तुसी प्रेरणा दे रहे हो, कि तुसी ए दस सकदे हो कि उस अकाल पुरख तो पहले कौन सी, उस तो पहले कौन सी? जिस वेले ए सवाल होया तां गुरु नानक पातशाह कहन लगे पीर जी इंज करो, तुसी थोड़े जे मोती मंगवा लो। जिस वेले इस बचन नूं दुहराया, पीर जी मोती मंगवाओ असी तुहानूं हुणे दस दिंदे आ, ते साध संगत उस वेले पीर ने अपने मुरीद नूं हुक्म कीता जाओ भाई मोती लैके आओ। शिष मुरीद मोतियां दा थाल भर लिया आया, सतगुरु गुरु नानक पातशाह अगे टका दिता, लो पातशाह मोती हाजिर हन। सतगुरु कहन लगे पीर जी ये मैनू नहीं चाहिए, मैं तुहाडे लई मंगवाए। कहन लगे महाराज मेरे लिए? कहन लगे हां ये आप दे वास्ते ने हुक्म। पीर जी इन्हों मोतियां दी गिनती आरंभ करो, इन्हों नू गिनना शुरू करो। हुण जिस वेले दस्तगीर पीर ने मोती हाथ विच लै ते गिनती नू आरंभ कीता, आख्या एक दो तीन, सतगुरु जी ने टोकता। साहब कहन लगे पीर जी गिनती सही नहीं है, फिर दोबारा गिनो। हुण पीर बड़ा हैरान होए, पीर कहन लगा महाराज जिवें आपदा हुक्म, गिनती फिर आरंभ करदा हां। पीर जी ने गिनती फिर आरंभ की, आख्या एक दो, सतगुरु ने फिर रोक दिता, पीर जी गिनती अजे भी सही नहीं। हुण दस्तगीर पीर हैरान होया ते कहन लगा पातशाह उम्र वडेरी हो गई, हो सकदा जबान लड़खड़ा गई होवे, आप दे सामने मैं कहण जोगा भी कुछ नहीं, जिवें तुसी हुक्म कर दियो गिनती फिर गिन लैना। हुण पीर बड़ा चौतन होया, कहन लगा साहिबा ने दो वार रोके है, तीसरी बार रोकण दा मौका नहीं देना, गिनती सही गिननी है। जिस वेले पीर ने आख्या एक, सतगुरु जी ने उत्थे ही हाथ फड़ लिया, पीर जी गिनती अजे भी सही नहीं है। हुण पीर बड़ा हैरान होया कि गिनती तां हुण सही है, सतगुर कह रहे ने गिनती सही नहीं। साहब कहन लगे पीर जी एक तो पहले गिणो। हुण पीर कहिंदा सतगुर एक तो पहले किवें गिणा, एक तो पहले अखर ही कोई नहीं, गिनती आरंभ ही एक तो हुंदी है। सतगुर कहन लगे पीर जी तुहाडे सवाल दा जवाब है, तुसां सवाल कीता कि एक तो पहले कौन सी, जिवें गिनती एक तो आरंभ हुंदी है, एक तो पहले कोई नहीं, एवें एक अकाल पुरख है, अकाल पुरख तो पहले कोई, केवल अकाल पुरख है। उस अकाल पुरख दा असा नाम जपना है, उस अकाल पुरख दा असी सिमरन करना है। आओ इस एक आवाज नूं सतगुरु ने कई जगह बुलंद कीता है, धन गुरु अर्जन साहब ने भी इस आवाज नूं बुलंद करदे हुए आखिया।

अज मनुख ने कीता की है, खाना पीना हसना सौना, बस इस गल्लां वल साडा ध्यान है। खाना की चाहिदा, पीना की चाहिदा, हसना खेडना ते सौना असां सिख लिया पर भुला की दिता है, विसर गया है मरना। सच नूं असां विसार दिता है, क्योंकि मरना सच ते जीना झूठ। ये ओही गुरमुख जन कह सकदा है जिसने गुरु नानक दी बात नूं बुझ लिया है, जिन्हें गुरु नानक पातशाह की गल नूं जान लिया। हुण साडे विच तुसीं देख लो, इस तों सिवा होर कोई गल है? अज भी मैं कई जगह ऐसा देखदा जब कोई भी जीव प्राणी मात्र मिलदा है, वह सवाल यही करदा है, भाई साहब दसो खाना की चाहिदा है ते पीना की चाहिदा, की खाना चाहिदा की पीना चाहिदा, इहदी विधि कोई प्रकार सानू दसो। ते साध संगत आपां इन्हां सवालां नूं छड्ड के होर भी सवाल कर सकदे हां। सवाल करन वाले केड़े ने कि अमृत वेले किन्ने बजे उठना है, बाणियां दा पाठ किवें करना है, सिमरन किवें करना है, बंदगी किवें करनी है, भगती किवें करनी है, प्रभु वाल मन किवें लाउणा है। सवाल करन वाले ते इह ने, पर आपां संबंध केवल खाण तक रखिया। हुण रात नूं खाणा खाण बहीए ते सवेर दा ख्याल पहले आ जांदा कि सवेरे की खाणा है, ओ भोलिया इहनूं ते खा लै, इहनूं खा के मालक दा धन्नवाद कर, सवेरे फिर वेखी जाएगी। ते सवेर दा जे खादा नहीं हुंदा, शामां दा पहले फिक्र पै जांदा है। अगर जे कोई फिक्र करना है, कोई विचार करनी ते ए करनी है कि रात बीती है मालक तेरे सिमरन विच, अमृत वेले अपने सिमरन दी दात बख्शी, अमृत वेले उठ जाइए ते अरदास करिया करिए, मालक जे अमृत वेले दा जागना बख्शिया है ते नितनेम भी बख्श, सिमरन भी बख्श, बंदगी भी बख्श, भगती भी बख्श, क्योंकि इस तो सिवा मनुख दा जीवन नहीं है। क्योंकि आपां खाना जरूर है पर जीवन वास्ते, खान वास्ते नहीं जीवना। कई मेरे वर्गे ऐसे है ने जेड़े जीवंदे ते हन पर खान वास्ते नहीं, भाई केवल जीवन वास्ते खाना है कि जेड़ी जिंदगी चल सके, जिदे नाल सिमरन हो सके। एवें थोड़ी महापुरखा ने आखे कि भाई अगर कोई जिंदगी विच चीज नूं वधाउणा है ते भजन नूं वधाओ। असीं भोजन वधा लिया है, भजन घटा दिता है। मैं महापुरख का ख्याल पढ़ रहा सा, बड़ा सुंदर है, मैं थोड़ी पेट करा। महापुरख कहते ने कि भोजन नु घटाओ, भजन नु वधाओ, क्योंकि जो बहुता भोजन करांगे वो साडे अंदर शक्ति ताकत पैदा करेगा, बहुता भोजन खावांगे साडे अंदर ताकत पैदा करेगा। ते जो बहुत ही अंदर शक्ति ताकत आ जाए ते ताकत तुहानू पता है खोण दी शक्ति पैदा करती है, खोण की भावना पैदा करती है, बहुत ही शक्ति, बहुत ही ताकत, बहुत ही विल पावर, वो खोण की भावना पैदा कर दी। महापुरख कहते ने इसे लिए खाना घट खाओ, भजन ज्यादा करो, क्योंकि बहुता भोजन खावांगे ताकत पैदा करेगा, खोण की भावना पैदा करेगी, बहुता भजन

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उनू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दे हजूरी विच जिवें उन्हां ने मान कीता, आपां वी मान करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

तारा मंडली तो पूजा परे नानक परती पलक ते गया पाताल नानक नानक बिना जहान दी दिशा।

तो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.